0: है तो गाउन है
1: हारियो हारियो हारियो
2: के भयो के भयो गाउ के
0: गाउन है
1: हारियो
0: हारियो हारियो
1: शर्त अनुसार अब भोग्नु पर्यो हामीले हैन